बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

हामी सँगै बसेर गामका कुरा हामी होइन शून्य सडसठी चार एक्काइस एक सय अन्ठानब्बे हामीले खुल्ला राख्छौँ होइन यता सबैजना आउनु होला है तपाईँ कहाँ हाम्रा गफरमलाई होइन म कुरेरै बस्छु क्या आउनु है कार्यक्रम गामका कुरामा।